लेकिन दिन बहुत हो जाए तो बंदा सोचण समझण वाला हो, दिमागी तल ते जीण वाला हो। शब्द चोट कर गया सी, सत्संग चोट कर गया, उदास होया, यकीन जानो हुण इस नूं एक होर चोट लगेगी, जिसलिए यह सारा शिंगार उसका तो कोई पता नहीं, वो तो है नहीं, ये शरा तो उदास हो जाएगा उसका दिमाग, एक कर्म कांड तो उदास हो जाएगा। इशारा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा सोहना किया है, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश देशांतर मैं सगले चागे। बड़े डेरिया च गया, बड़ी तीर्थ यात्रा की है, बड़े साधु संतां कोल गया, बड़ा सत्संग किया है, दिन बहुत लंघ गए ने, मुद्दत बहुत हो गई है, प्राप्त कुछ नहीं होया, निराशा, भाई निराशी। ऐसा होंदा है, कोई मनुख पुत्रां तो निराश हो जाता है, कोई मित्रां तो निराश हो जाता है, कोई पत्नी तो निराश हो जाता है, कोई पति तो निराश हो जाती है, ऐसा होंदा है जगत, कोई मां बाप तो निराश हो जाता है और कोई बच्चियां तो निराश हो जाता है, इन्हां तो मैनू की सुख मिलना है। ऐसा भी होंदा कोई गुरु तो निराश हो जाता है, परमात्मा तो निराश हो जाता है, पता नहीं है भी सही कि नहीं, और उसके मिलन नाल के मिल जाना है। गुरु तो निराश, परमात्मा तो निराश, और पक्के निराश बिरति दे ओ मिलणगे थानू जो बड़े चाव मलार नाल इस मालक पे चले सन, ये भी मैं अर्ज कर दूंगा। दूसरे की गल नहीं, दूसरा इतना उदास नहीं होगा, दूसरा तो इस मार्ग का जे पांदी ही नहीं, उदास हो गया, भाई निराशी बहुत दिन लगे। अगर ये उदास होया है तो इस रहत बैत का, इस शरा का, इस कर्म कांड का फिर सही इस्तेमाल करेगा, अगम्मी दुनिया की तलाश करेगा, परम प्रकाश की खोज करेगा, सिर्फ इस दे च नहीं जीवेगा, यह भी मैं अर्ज कर दिया। जिन्हों की जिंदगी का मकसद मंजिल सिर्फ कर्म कांड हो जाता है, सिर्फ शरा हो जाती है, वो जितने कठोर होते ने रूहे जमीन दे ते इतना सख्त कठोर होर कोई भी नहीं हो सकता, यह भी मैं अर्ज कर दिया। वो जितने कठोर हो जाएंगे, वो जितने जालिम हो जाएंगे, वो जितने सख्त दिल दे हो जाएंगे। एक उदाहरण तवारी ही मैं थोड़े सामने रखा, गल स्पष्ट हो जाएगी। सूबा सरहंदी कचहरी रिच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के मासूम लाडले पेश किए गए, जिन्हां नूं पहले बुरज दिच रखा गया, ठंडे बुरज दिच अज पेश किए गए कचहरी रिच। सूबा सरहंद कहिंदा इह मासूम अस्त, इह ते छोटे ने बहुत, इहदा मतलब उहनूं मुगलता सी, उन्हें नहीं देखे सन, ई मासूम अस्त, ये तो बहुत छोटे, ये तो बिल्कुल बच्चे ने, इसका मतलब है उसके दिल के किसी कोने में दया पैदा हो गई, ये बहुत छोटे हैं, मासूम ने, ई मासूम अस्त। इसे ही सभा में एक काजी बैठा है, इसे ही सभा में दीवान सुचानंद भी बैठा है, नवाब मलेरकोटला भी बैठा है, आले दुआले दे होर नवाब के जागीरदार भी बैठे ने, कुल मिला के 17 बंदे ने जिन्हां ने फैसला करना है इन्हां मासूम बच्चियां बारे, और फैसले ते मोर लानी है नवाब सूबा सरहंद वजीद खान, मुखी ओ है, पर इस मुखी दे मुंह बच्चियां नूं वेखदे ही बोल निकल गए, मासूम अस्त, ये छोटे ने, बहुत मासूम। दीवान सुचानंद कहिंदा ई फरजंदे मार अस्त, ये मासूम नहीं, ये सब दे बच्चे ने। दीवान सुचानंद ई फरजंदे मार अस्त, मार कहिंदे ने सप नूं, परशियन विच, अरबी विच, पश्तो विच सप नूं कहिंदे ने मार, ई फरजंदे मार अस्त, फरजंद कहिंदे ने बच्चे नूं, ये सप दे बच्चे ने, ये वड्डे होके डंग मारन इन्हों का सिर अज ही कुचल देना चाहिए। मार ई फरजंदे मार अस्त, ये बोल दीवान सुचानंद वकत पाके कलगीधर दे कन्ना तक भी पहुंचे सन, मेरे बच्चियां नूं शहीद करन तो पहले मार आख्या गया, सप आख्या गया,

है ये व्यक्तिगत बंदगी, समूहक बंदगी नहीं है। समूहक बंदगी कथा कीर्तन, वाहेगुरु वाहेगुरु ये समूहक बंदगी नहीं, जो बाजे जोड़े जोड़िया ते छेने लेके वाहेगुरु वाहेगुरु इंज जो है उच्चा उच्चा अलापन लग पे, मेरी आत्मा कदी उन्होंने सहमत नहीं हुई। ये भी मैं अर्ज करने इतनी व्यक्तिगत बंदगी है। इतने कीर्तन करो, कथा करो, गुरबाणी का पाठ करो, जप करो। वाहेगुरु ये व्यक्तिगत बंदगी है, व्यक्तिगत। समूहक बंदगी व्यक्तिगत बंदगी। दरबार साहब दे इस तरह वाहेगुरु वाहेगुरु करने की कोई इजाजत नहीं, कीर्तन होगा सर। उतो प्रेरणा लेके जाओ, फिर व्यक्तिगत बंदगी वाहेगुरु वाहेगुरु जपो। और वाकई ये गुरुद्वारे तो प्रेरणा ले आया है, इन फल मिल गया है, पहचान की होगी, वाहेगुरु वाहेगुरु जपन लग पे है, बस ये पहचान है। ये रसोई घर दे चाहिए चार फुट, अगर रोज रोज उसी थां ते बैठ के जप जारी रहा, यकीन जानो जगह भी चार्ज हो जाएगी। और जिथे तक दास का निका जिया अनुभव, अगर उथे कोई दुष्ट भी बैठ गया ना उस थां ते, उहदी जबान तो भी वाहेगुरु निकल जाएगा, वो जगह इतनी चार्ज हो जाएगी, उस जगह का इतना असर है। और जो एक दफा चार फुट जगह असी चार्ज करने दे सफल हो गए, मंदिर बनाने दे सफल हो गए, तो सारा घर मंदिर बन जाएगा, सारा घर धर्मशाल बन जाएगा। घर घर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा वसोया। इस ढंग नाल जी कि तेरा घर भी गुरुद्वारा बन जाए, इस ढंग नाल ना जी कि तू गुरुद्वारे नूं भी अपना घर बना लवे। मैं लवज फिर दोहरा दें, इस ढंग नाल जी कि तेरा घर भी गुरुद्वारा बन जाए, इस ढंग नाल ना जी कि गुरुद्वारा भी तेरा घर हो जाए। घर नूं गुरुद्वारा बना, गुरुद्वारे नूं घर ना बना। जिहड़ियां हरकतां तू घर विच करदा है ते उही गुरुद्वारे करन लग पिया, तो गुरुद्वारा ते घर बन गया नहीं। तू घर दे भी इस ढंग नाल जी के घर गुरुद्वारा बन जाए, तेरे घर दे कोलों कोई लंघे अगलियां नूं महक मिले धर्म दी। घर घर अंदर धर्मशाल, घर ही धर्मशाल हो जाए। चलो सारा घर नहीं धर्मशाल बना सकदा, सारे घर नूं रूहानी किचन नहीं बना सकदा, तू चार फुट जगह ते रख जिथे चौकड़ा मार के तू वाहेगुरु वाहेगुरु जप सके, और उस जगह नूं महफूज रख ले, उते होर कुछ ना होवे। पुराना निजाम तो यह कहता सी कि रसोई नूं पवित्र रखो, तन दी खुराक जिथे बने ते मन दी जिथे बननी उहनूं ते पवित्र रखना ही है, साफ रखना ही है, दोवें पवित्र रख। ध्यान जद कंठ दे च आवे मधमा दे च, रसना नूं रस आण लग पैंदा। वाहेगुरु वाहेगुरु ये जप जारी रहे ते ध्यान चला जाए हिरदे तक, इस तरह का मनुख अनहद दी धुनी सुन लग पैंदा है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे, तूरे शहनाइया अनहद दियां शहनाइया वजन लग पईआं। चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा, अनहद दा वाजा वजन लग पेगा, तू चिंतन ते कर। हर तीजे चौथे शब्द दे च अनहद शब्द दा जिक्र आ जाएगा गुरु ग्रंथ साहब दे च। आहत जो दो चीजां दे टकराव तो पैदा हुंदा शब्द, जैसे दो हत्थां दे टकराव तो, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, सोने नाल सोना, लोहे नाल लोहा या लोहा पित्तल नाल, दो चीजां दे टकराव तो जो आवाज पैदा हुंदी उहनूं कहिंदे ने आहत। पर जो ब्रह्मंड दे च व्यापक है उहनूं कहिंदे ने अनाहत, उसे तो सारा जगत पैदा होया। कीता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरिया, ए नाद हर मनुख दे अंदर वज रहा है, घट घट वाजे नाद, सुनाई क्यों नहीं देंदा, ध्यान नहीं अंदर मुखी। जद हिरदे तक ध्यान पहुंच जाए पसंती तक, ए अनहद दियां धुनिया सुनाई देन लग गए। अनहद रूप अनाहद बाणी चरण सरन जाए बस्त भवानी, आहत शब्द साडे ने असी बोलदे हां, अनाहद बोल

다른 걸 원칭지 말아이다. 혹은 렛 베아리 모지코 식 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए। रहनी दो तरह की, मानसिक ते शरीरक। मानसिक रहनी है बाणी का पाठ, जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई, आनंद साहब, और जितनी बाणी पढ़ सके। मूल मंत्र का जप एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या जितना उसको समय। ये मानसिक रहत है। तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है। मन करके सिख बने, तन करके ये सिख बने, तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए। ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने, क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी। धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख, तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख। रहत नामे इस तरह के बोल ने, ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो। जिवें कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे, ज्यों काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो, तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होय होत जग माही। अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे, लोकी उसनु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते, भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया। तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही। ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है? अगां फरमान कर देने, तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए। इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने, मानो खोते नु इशनान कराया गया, फुलां दी माला पवाई गई है, चंदन आदक लाया गया, बस खोते ही रख होता है। सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत। भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान, निशाने सिखी ई पंज हरफ का, जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल, मूल मंत्र दे जप नाल, गुरमंत्र दे जप नाल, उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा। इना पंच ककारा नाल, कक्का के

0: लेकिन जलाना चले आ रहे है। हैरानगी है किधरे दहेज दे नाते, किधरे पवित्रता दे नाते और किधरे पुरुष दे गुस्से दा क्रोध दा शिकार होई स्त्री। जिंदा जलाई जांदी रही है और जलाई जा रही है। ये ठीक है, सारी दुनिया विच आवाजां उठियां ने और स्त्री ने भी आवाज उठाई है पुरुष दी बराबरी दी। अधिकारां दी बराबरी मनी जा सकती है। ईश्वर दा चिंतन ते आनंद पाण दा अधिकार जिथे पुरुष दा है स्त्री दा भी है। मान सम्मान जिथे पुरुष नू चाहिदा है स्त्री नू भी चाहिदा है। लेकिन बराबरी तो मुराद किधरे ये ना समझ ले जावे कि हर तल ते बराबरी। हर तल ते बराबरी तां परमात्मा ने ही नहीं की थी। स्त्री ते पुरुष दा तन अलग बनाया है, वख वख बनाया है और जिथे तन दा ढांचा प्रभु ने अलग बनाया है, मन दा ढांचा भी प्रभु ने अलग बनाया है। दो विपरीत रंगा नाल तस्वीर बड़ी सोहनी बनती है, अच्छी बनती है। विरोधी सुरां ते ही संगीत दी धुन खड़ी है। कदी बगौर मुताला करिए, काला रंग चिट्टे जैसा नहीं है, चिट्टा पीले जैसा नहीं है, पीला लाल जैसा नहीं है, लाल हरे जैसा नहीं है, पर इना विरोधी रंगा दे सुमेल नाली कोई सुंदर तस्वीर बनती है। हो बहो विरोधी सुरां ते ही खड़ा है संगीत, किसे एक सुर ते किसे संगीत दी धुन नू जन्म नहीं दिता जा सकता। विरोधी जो है सुरां चाहीदियां ने। संसार संगीतमयी होवे, संसार सुंदर होवे तो ये दो विरोधी सुर ने जिस तेच इंज कह लिए तीव्र सुर है पुरुष, कोमल सुर है स्त्री। संगीत दा बोध रखण वाले इस गल नू समझ देने, कुछ सुरा कोमल ने, कुछ सुरा तीव्र ने और इस तरह सुंदर संगीत दा जन्म होंदा है तीव्र ते कोमल सुरा नाल। स्त्री कोमल है तदी ता एक आलम ने कह दिता है जहूरे जन से पुर रौनक कायनात। कायनात दे दुनिया दे संसार देच अगर कुछ रौनक है, कुछ रस है तो स्त्री करके। पुरुष इस रस नु विस्तार देंदा है, स्त्री एक रस है। रस फैल सके पुरुष चाहिदा है। इना दोहां दी अपनी अपनी लोड़ है। जैसे मलाह नु एक पासे कर दईए तो बेड़ी भी बेमैनी हो जाती है, वैद नु एक पासे कर दईए तो जड़ी बूटियां दी खूबी भी प्रगट नहीं हो सकेगी, पवन नु एक पासे कर दईए तो फुल्लां दी महक भी दूर दराज तक नहीं जा सकेगी। इसे तरीके दे नाल दोहां नु अलग अलग कर दईए स्त्री ते पुरुष नु, दोवें बेरैमक हो जाणगे और दोवें बेमैने हो जाणगे, लेकिन दोहां दा सुमेल कारज दी सिद्धि है। जैसे मलाह ते बेड़ी दा मेल, जैसे पवन ते फुल्लां दा मेल, जैसे वैद ते जड़ी बूटियां दा सुमेल, जैसे बीज ते धरती दा मेल, जैसे पानी ते साबण दा मेल कपड़े नू साफ करदा है, इसे तरीके नाल स्त्री ते पुरुष दा सुमेल ही संसार दी रौनक है और जीवन सुखमयी है। बराबरी हकूक दे तलते ते हो सकती है और है। जे रब्बी रस माणन दा पुरुष नू अधिकार है, स्त्री नू भी उतना अधिकार है। लेकिन तन ते मन दी बराबरी परमात्मा ने नहीं की थी। इस वास्ते कम कारज कुछ वंडे हुए ने। घर संवरदा है, सथिर रहिंदा है, महान आउंदा है इस्त्री करके, पर घर दे बारों सुख आंदा रहे, संपदा आंदी रहे, तो भजन दौड़न लिए पुरुष चाहिदा है। पुरुष का शरीर प्रभु ने ऐसा बनाया है, स्त्री नालों ज्यादा सख्त है और ज्यादा भारी भरकम कम कर सकता है। यही कारण है कि पुरुष पहलवान नाल स्त्री पहलवान मुकाबला नहीं कर सकेगी। जिथे उसका मन कोमल है, शरीर भी कोमल है, और इस कोमलता दी लोड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार विच कुछ कोमलता बच जाए। अगर पुरुष कोल भी कुछ कोमलता है तो ये स्त्री दा गुण है और स्त्री करके है। थोड़ी बहुत तर्क जे स्त्री दे तल ते भी मिलती है तो पुरुष करके मिलती है, वो थोड़ी बहुत ते चाहिदी है ताकि उसकी कोमलता दी रक्षा होवे। कुदरत दा एक नियम है कि फुलना दी रक्षा कंडे ही कर देने, फुल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सोने दी रक्षा लोहे नाल आउंदी है, कोमलता दी रक्षा सख्ती नाल आउंदी है। इसनू प्राचीन विद्वान ते इंज भी कहंदे रहने, स्त्री नू हर समय पुरुष दी सख्ती दी लोड़ है, रक्षा लई सुरक्षा लई। प्रथम पिता दी, पति दी, फिर पुत्र दी, ताई जो है ये सुरक्षित रह सकती है, अपनी इज्जत आबरू नू बचा के जो है रख सकती है। व्यास जी ते कहा करदे ने उना दे बोल कि स्त्री प्रकृति दी बेटी है, इस ते इंसाफ चाहिदा है और प्यार चाहिदा है, सत्कार चाहिदा है। सिख साधी साहब कहंदे ने जिस घर दे चों स्त्री दे चीखण चिलाण दी आवाज बाहर आउंदी है, उस घर दे चों सुख ते संपदा मान लो बाहर जा रही है। वाकई उस घर दियां खुशियां, उस घर दी शांति, उस घर दा सुकून बाहर चला जांदा है जिथे स्त्री दा रुदन घर दी चार दीवारी तो बाहर चला जाए। कवि तुलसी ने स्त्री दे कुछ वक् वक् रूप इस ढंग नाल जो है बयान कीते ने। स्त्री चार रूप अपने जो है रखदी है, उनू रामायण विच रामचित मानस विच कवि तुलसी इस तरह जो है बयान करते हैं। जग प्रतिवर्ता चार विद अही, वेद पुराण श्रुति अस कही। इस तरह आख है, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। उत्तम स्त्री उसकी दृष्टि जगत देच उसके पति तो बिना और कोई भी पुरुष नहीं है, वही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। इसनू अध्यात्मक रंगन गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ी सुंदर दिती है। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जाने, धन सती दरगे परवाने। जिसने परमात्मा दी झलक अपने पति दिच देखी, महाराज कहने धन है वो सतवंती, धन है वो स्त्री। कोशिश ते हो ही सी साडे देश दे कि स्त्री पुरुष नू परमेश्वर आखे, परमेश्वर दी झलक वो पुरुष देखे और पुरुष स्त्री नू देवी आखे, वो प्रभु दी शक्ति दी झलक स्त्री दे जो है देखे। अगर इक नू देवी दिखाई देवे और इक नू परमात्मा दिखाई देवे तो घर मंदिर बन जाता है, घर हरि मंदिर बन जाता है। पर इक नू भूत दिखाई देवे, इक नू डायन दिखाई देवे, घर ही नरक बन जाता है। पता नहीं पृथ्वी ते कितने घर नरक बने हुए ने, क्योंकि घर कोई डायन रह रही है, कोई भूत रह रहा है। एक नू डायन दिखाई दे रही है और एक नू भूत दिखाई दे रहे। जीवन दा ढंग ना आया, एक दूजे नू समझण दा ढंग ना आया। कवि तुलसी कहंदे ने, जिथे चंगे माड़े पुरशां दे चौंदे ने, उथे चंगे माड़े स्त्रियां दे च भी होंदे ने। जैसे पृथ्वी ते सिर्फ दिन नहीं रात भी है, मनुखी तल ते सिर्फ गुण नहीं औगुण भी ने। ओ औगुण पुरुष दे अंदर भी ने, ओ औगुण स्त्री दे अंदर भी ने। उत्तम स्त्री दी तस्वीर कशी करदे हां, तुलसी कहंदे ने, उत्तम के अस बस मन माही, सुपने हूं आन पुरुष जग नाही। मद्धन पत प्रत पर प्रत, देखियत ऐसे भ्राता पिता पुत्र नित जैसे। जो उस तो थले दी है उते इस तरह समझ दिए, पर पुरुष नो ये पिता है, भरा है, पुत्र है। उदी दृष्टि इस तरह दी होंदी है। अगां चल के कवि तुलसी कहंदे ने कि बिन अवसर भय तह रह जोई, अधम सोनार जानो जग सोई। बिना अवसर मिलिया, बिना मौका मिलिया, उसने बस अपनी असमत साम के रखी है, वरना वो लुटान नो तैयार है। ये सब तो नीवी है, ये सब तो निखेद है। अगर ऐसा निखिधपना स्त्री ते लागू होंदा है तो फिर पुरुषां ते भी लागू होंदा है। पर गुणां दे तल ते अगर देखी है तो जिथे पुरुष रब दे गुण प्राप्त कर सकदा है, स्त्री प्राप्त कर सकदी है। घर विच धन संपदा है, वाकई उस दे जे अद्धा अधिकार पुरुष दा है, अद्धा अधिकार स्त्री दा है। अज ते कानून भी ऐसा मनन लग पे है। एक गल वखरी है कि पुरुष दा अहंकार बराबरी देन नू अजे भी तैयार नहीं, लेकिन इस हद तक ते बराबरी मनी जाएगी। शरीर अलग है, मन अलग है, जिम्मेवारियां अलग अलग ने। अगर पुरुष स्त्री दी नकल करे, स्त्री वर्गा बनना चाहे, मुश्किल। और अगर स्त्री पुरुष दी बराबरी करके पुरुष जैसा बनना चाहे, ये उसकी सब तो वड्डी भूल होवेगी। क्यों कि पुरुष जैसा जब तन नहीं है तो मन भी पुरुष जैसा नहीं। पुरुष जैसे कपड़े पाके, पुरुष जैसियां जुतियां पाके, पुरुष जैसी चाल चल के, पुरुष जैसे बोल बोल के, और पुरुष दी तरह ही गंदे नशे जो है करके स्त्री पुरुष जैसी ते नहीं हो सकेगी, पर स्त्री स्त्री जैसी भी नहीं रहेगी। हां इन्हों बारों भी समझिया समझाया जा सकता है। अगर चमेली गुलाब जैसा होने की कोशिश करे तो गुलाब ते नहीं हो सकेगी, पर चमेली चमेली भी होने तो शायद रह जाए। जिथे जिथे स्त्रियां ने बैरूनी तल ते पुरुष की बराबरी करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वालियां जिम्मेवारियां चुकनियां ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाने ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है तो घर वसदा है स्त्री करके ते जद घर हो स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह तो घर घर ना रहा वो ते सिर्फ मकान रह गए इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई संतान भी टूट भज गई बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी मां दा प्यार नहीं मिलिया मां दी गोद नहीं मिली ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं की थी। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए उथे औलाद भी सखणी होई धन ही धन रह गया जो जड़ है और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथे सी तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है बिगड़दा जा रहा है क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया दे इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है। जिस दा कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना और पुरुष दा इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है घर हरी मंदिर बन सकता है। नहीं ते उजड़िया होया खोला उजड़िया होया एक खंडर इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूर्दे होया के है जे कुछ महान मनुखां करके संसार दा इतिहास रौनकीला बने होया है वाकई इना कुछ महान हस्तियां नू इतिहास दिचों कढ़ देईए सारा संसार बेरौनक हो जांदा है पर इना हस्तियां नू जन्म देण वाली मां ही ना आउंदी ऐसी धरती ही ना आउंदी तो ये फुल किथे खिड़ने सन और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नू बराबरी दिती। दैवी गुणा दिच भी कुछ गुण पुरुष ने कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है भक्ति स्त्री है दया स्त्री है पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणदे जाइए शांति स्त्री है क्रांति पुरुष जो है मन लीए पर क्रांति शांति ते आधारित होवे सूरवीरता सहनशीलता ते आधारित होवे और संतोख दया दे आसरे ते टिके होवे ताई खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जे मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने अमृत ਦੋਵੇਂ ਪਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਗਾਂਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਤਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਦ ਕਟਾਰੇ ਜੇਵੜਾ ਤੇ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲੁਭਾਇਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਗਾਰ ਮਿਲਨ ਕੇ ਤਾਈਂ, ਹਰ ਨ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਗੁਸਾਈ, ਹਰ ਮੇਰੋ ਫਿਰ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਰਾਮ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲਹੋਰੀਆ। ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਮਰਾਈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਹਕੂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਰ ਤੇ ਮਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੱਕ ਨਰ ਔਰ ਮਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅਸਤੂਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਛ ਨਰ ਹੈ ਕੁਛ ਮਦੀਨ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ, ਐਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਆਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਮੇ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਮੇ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੋ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ, ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ, ਤਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਵੀ। ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹ 60% ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, 40% ਇਸ ਦੇ ਚ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਠ दसवीं सदी स्त्री है पर चालीसवीं सदी इस देश पुरुष है। साढ़े देश ने नारी नो अर्ध अंग आख है। ये गल वखरी है कि कहन दा लब्बो ले जा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना ट्रेंड देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूरन। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे चे और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावत ने, हम जिन्स तो प्रभावत नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नूं संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उसका नाम आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। इति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, इति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया। पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष। और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैन है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नु पुरुष आख्या है, भक्ति नु नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास। कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे। ज्ञान नो राव आख्या पुरुष आख्या। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष दे अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री दे अंदर। मन दा टिकाओ भावना लौंदा है, मन नु सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री दे अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हृदय है पुरुष तक। पुरुष के अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री के अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बह बलौंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार का चलना ही संसार का चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देंगे, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ति खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नो चलाए मान रखना चाहती है। ये ताई चल सकेगा परिवार चलन, परिवार चल रहे है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दाद के सौरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने। ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सौरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञान हीणी है, तर्क हीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री कोल भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नू पिंड नू अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलण दे च असमर्थ रह गए। अंधा टंटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है, और यही हाल पिंगले दासी बुए ते बैठा है। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नो, और आवाज मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है, अंधे दी पिट से ये पिंगला बैठ गया, रास्ता दस्ता गया और रस्ते थे अंधा चलदा गया। इस तरह तो में अगदे चो निकलन दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चो निकलन दे स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है और दोवे निकल सकते ने। अंधे नू पैर मिल जाणगे और लंगड़े नू पैर मिल जाणगे, अंधे नू अखां मिल जाणगियां। हकीकत है ये सच्चाई है। पैरां दी सारी गति किसे हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होवेगा। रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा। ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा। धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही, ज्ञान ना रहा। परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही, पुरुष ना रहा। जिथे स्वभावक एक गुण है स्त्री दे अंदर, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, भावना मन नू टिकाण दे बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लेंदी है, क्योंकि टिकाओ है। भावना मन नू टिका के रख दी है, श्रद्धा मन नू टिका के रख दी है। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर देच नहीं बैठ सकेगा। तर्क उदे पैरां नू गति देंदा है, भटकांदा है, चल। इस वास्ते कहंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रवान प्रधान रखी है। ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रख दी है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है। प्रबल भावना करके घर वसिया रहिंदा है और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैलदी जांदी है, वधदी जांदी है। लेकिन कुछ स्वभावक औगुण भी है स्त्री दे अंदर पुरुष दे अंदर। स्त्री दे अंदर स्वभावक जो औगुण है बड़ी प्रबल ईर्ष्या है। स्त्री दी स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या है और इस ईर्ष्या करके ईर्ष्या करके जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखण दे आ है बहुते घर मर्दां करके नहीं टूटदे, स्त्री दी ईर्ष्या करके जो है टूट जांदे ने। स्त्री दा स्त्री नूं बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जांदा है, बहुत कठिन हो जांदा है। सस ते नूं देराणी ते जठाणी परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नूं सहन करन बर्दाश्त करन। यूरोप दी दुनिया ते सारे परिवार टुट गए ने और एशिया दे बहुते परिवार कल कलेश दे दल दल दे फसे हुए ने स्त्री दी ईर्ष्या करके। पर पुरुष दा तर्क फैलाओ इस दे अंदर बड़े प्रबल हंकार नू जन्म देंदा है। तो पुरुष दा जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर देच कलेश मचाना स्वभाविक हो जाता है। हंकार तिजेल सी इसका टकराव किसे वक्त स्त्री ते पुरुष का टकराव हो जाता है और दूरियां नू जो है जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी होवन सतपुरुषां तो प्रेरणा लेने वाले हवन, तो फिर दोहें अपने गुणा दी सही वरतो करके परिवार नो स्वर्ग बना सकते ने, संसार नो स्वर्ग बना सकते ने। प्राचीन जमाने तो लेके हुण तक धार्मिक जगत देच शायद कुछ इना ही कमजोरियां करके स्त्री निंदनी रही है और नरक दी द्वारी कहते रहे ने साडे देश दे आदर्श, इते नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश दे किसी हद तक इस नु शूद्र मनिया गया है, ये जनेऊ पहनण दा अधिकार नहीं रखती, इनु वेद पाठ करण दा अधिकार भी नहीं दिता और इसनु ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी दी गल है, महाकवि तुलसी भी इसनु पशुआ दी श्रेणी दे खड़ा कर देने, ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नो पशु नो ताड़ दे रही है तां ठीक रहिंदे ने, इस तरह शूदर नो ते पशु नो जिवें ताड़ दे आ उसे तरह स्त्री नो ताड़ दे रही है तां ठीक रहिंदी है। पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने मुनियां ने, ये घोर नरक दी द्वारी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी, इते मोक्ष द्वारी है, इस तो बिना मुक्ति किते। हैरानगी, मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी, किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ए सी कि स्त्री नो असी किधरे भी अवतारी दुनिया दिच नहीं देखते। आज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरुष तन धारण करके आए। जे अपने देश दे प्राचीन सिरमोहर अवतारी पुरुषां नू देखिए, विष्णु ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, बड़े बड़े भक्त ने, ऋषि ने, मुनि ने, पुरुष रूप देच ने। स्त्रियां देच कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नू नहीं मिली। साहित तरह तरह दी कला दे जन्मदाते भी पुरुष, संगतराश, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, चोटी दे साइंटिस्ट, चोटी दे राजनेता, हर दुनिया विच हर पासे असी पुरुष नो अग्रसर देखदे हां, अग्गे देखदे हां। तो पुराने लोगां कोल ए तर्क सी कहण वास्ते कि पशु दा मतलब है पछड़े होया, तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है, पशु दा मतलब है पछड़े होया, पुरुष तो पछड़ी हुई है, पुरुष दे पिछे है। इस वास्ते आदकाल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पिछे ही चले, क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है, पिछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंगे है, दौर लंगे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआं दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी, जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिनती दे च ओ भी आउंदा सी, इस दे कोल स्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कोल 400 स्त्रियां ने, इहदे कोल 600 स्त्रियां ने, दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने। इस दौर दे च भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने, 400 राणियां और 600 बेगमा रखण वाले मौजूद और इना दी आम जो है चर्चा एक धन से किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन देच स्त्री नो पुरुष ने मार देता है तो एक जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नो चिकड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नो आप ही आग लावे, कोई अपनी धन संपदा नो साड़ देवे तो अपना धन सी आप फूके है कोई जुर्म नहीं, स्त्री का धन सी खत्म कर देता है कोई जुर्म नहीं, ऐसा दौर भी लंघ गया। और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री दे अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गर्स के आद काल तो स्त्री नू पशु कहण दा, पछड़े होया कहण दा तर्कशील लोगों को जिड़ा तर्क सी ओए है कि एक कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके, अवतारी दुनिया दे च नहीं दिखाई देंदी और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री। संग तराशी संगीत कला दी दुनिया दे च, ज्ञान दी दुनिया दे च, सुधार दी दुनिया दे च, अवतार दी दुनिया दे च पुरुष ही पुरुष अग्गे दिखाई दे रहे ने। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होण दा इस सब तो वड्डा सबूत है, ये पछड़ी हुई है, ये पछड़ी हुई है। आया धन गुरु नानक देव जी महाराज दा जमाना, आपने इस तर्क नो बड़े सोहने ढंग नाल जुठलाया, परे सुटिया, ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते अवतार नु जन्म देने दे च लग गए। वो आप किस तरह ग्रंथकार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते किसे ग्रंथकार नु जन्म देने दे च लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आंदा, ग्रंथकार नहीं आंदा, साइंटिस्ट नहीं आंदा, कलाकार नहीं आंदा, हर स्त्री कलाकार नु अवतार नो संत नो जन्म देण वाली भी नहीं आती। जो किसी संत नो जन्म दे सकी है वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसी अवतार नो जन्म दे सकी है और अवतार ने किसी ऐसी स्त्री की कुख चुनी है तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना संत पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना कोई ग्रंथकार चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है उतनी ही उसनु जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है, क्योंकि उसका समा उसकी शक्ति ग्रंथकार नु जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहंदे ने तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ मां। जिसने किसे ऐसे पुरुष नु जन्म देता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नु सफल कीता है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इसनु जन्म देता है, पूजन योग है ओ मान, धनता दी योग है ओ मान। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नु पुरुष दे बराबर ते खड़ा कर देता, अवतार दी बराबरी ते अवतार दी मां नु खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नु खड़ा कीता। और ऐलानिया के आ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, यहूदिया दे धार्मिक मंदिर स्त्री लई बंद ने, इस्लाम दिया मस्जिदा स्त्री लई बंद ने, वेद पाठ स्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ स्त्री जो है नहीं पहन सकती। और जैन धर्म ने ते इत्थे तक कह दिता स्त्री शरीर दे च, स्त्री दे चोले दे च मुक्ति नहीं हो सकती, स्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नो प्राप्त करना होवेगा। स्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी। स्त्री चोलई ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, स्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है और इस दी भावना प्रधान अवतारां नूं ग्रंथकारां नूं भक्तां नूं जन्म देंदी है। ये महान है, ये पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा।
1: उच्चारण करो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुवान जिला टांक उस धरती ते होया है। जदों आपां जयपुर तो कोटे नूं जाइए जां कोटे नूं राजस्थान विच जयपुर नूं जाइए ते रस्ते दे दरमियान एक शहर आउंदा है जिस नूं टांक किया जांदा है। इस टोंक शहर तों थोड़ा जा अंदर नूं जा के पिंड तुआन है। ऐद की सबब बनिया सन्मान योग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा और दास नूं भगत धन्ना जी दे उस अस्थान ते कीर्तन औत कथा करन दा सुभाग मिल गया जिस थां ते भगत धन्ना जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती कीती है। भाई साहब नाथ दे नाल सन कई बिगे जमीन अज भी भगत धन्ना जी दे नाम ते बोलदी है। भगत धन्ना जी दा ओ खूह है कि जिस खूह दे उपर उन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती और परिपूर्ण परमात्मा ने उस भगत उस महापुरख दे कारज अराज कीते सन। भाई साहब पिछले साल नाल सांसी कठे सी ते उथे भी विचारां भगत धन्ना जी बारे होईयां। मैं सिर्फ उन्हां दे जीवन संबंधी एक अर्ज करनी चाहना हां कि आम तौर ते भगत जी दा जिक्र भाई गुरदास साहब जी दी उस पौड़ी नूं आधार बना के कीता जांदा है जिस विच ठाकर दी पूजा दा जिक्र कीता गया है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जदों इंसान परमार्थ दे मार्ग ते चलदा है ते कई वारी कितना समा उहदा कर्म कांडां दे रूप विच ही बतीत हो जांदा है। इहनूं ध्यान नाल मेरी बेनती नूं सरवण करियो। पर वो कर्म कांड तो उदो मुक्त हो जांदा है जदो उदे अंदर सच्चा ज्ञान ते समर्थ गुरु कोलो उनु गुरु दीख्या मिल जाए शब्द दी रोशनी विच जीन लग पवे ते वो बाहर मुखी कर्म कांडा तो सदीव काल लई मुक्त हो जांदा है। दास गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत धन्ना जी दे तीन शब्द ने। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰਲੇਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧੰਨ ਹੀ ਧੀਰੇ मैं सिर्फ बाणी ते फोकस केंद्रित होके कुछ बेनतियां करनिया ने।

केवल नीवा की नहीं कि जे ओ परमात्मा दी भगती समर्पितता दा जिक्र करदे सन ते उन्हां भगतां महापुरखां नूं उच्ची जात वाले जलील भी करदे सन। देखो थोड़ा जा बाणी दी रोशनी च इह दास ने पिछले सालां विच वी एक वार अर्ज कीती सी, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत धन्ना जी परमात्मा दी भगती किवें कर लगे उन्हां दा पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच कि भगत धन्ना जी नूं करनी कमाणी वाले महापुरखां दे जीवन बारे पता लगा। सब तो पहला भगत नामदेव जी, उन्हां दे पवित्र जीवन संबंधी यह समाचार मिलिया कि उच्ची जात वेले उन्हूं अद्धी कौडी दा छिंबा कहिंदे ने। गल ध्यान नाल सुनियो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर निकल के नहीं। अद्धी कौडी दा छिपा कहिंदे ने, पर अज उस दा अंदर परमात्मा दे नाम च शब्द विच इन्ना कु लीन होया कि गुरु ने अद्धी कौडी दे छिंबे नूं अज लखां दा बना दिता है। उहदी अरदास मालक दे दर ते सुनी गई। दूसरा बचन कि भगत कबीर साहब जी नूं बनारस दी धरती ते स्वर्ण जाति वाले जुलाह कह के पुकारदे ने। जदों उह सच दी गल वी करदे ने, अखौती उच्ची जात वाले उहदी सच दी आवाज नूं वी दबाण दा यतन करदे, पर उस महापुरख बारे दस्या गया कि उन्हां ने अपनी किरत जरूर कीती पर तमे ते लालच दी बिरती नूं त्याग के केवल परमात्मा नूं गाया, जिस नूं लोक जुलाह कहिंदे सन। तन गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने धन्ना जी नूं दस्या गया कि ओ गुणा दी खाण बन गए कबीर जी। तीसरा बचन कि भगत रविदास जी ने उन्हां दी बिरादरी दे लोकां दे घरां विच्चों मरे हुए पशुआं नूं ढोंदे ने, पशुआं दा चमड़ा उतारिया जांदा, पर सतगुरु दी बाणी विच गुरु अर्जुन देव ने कहा भाई संसार दे लोगो कि देखो कि जिहड़ा घर घर दे विच जा के मरे हुए पशुआं दा चमड़ा उतारन दा काम करदा है उहदे खिरदे विच परमात्मा दी भगती वस गई ते उहनां ने साध संगत विचों परमात्मा दे दीदार नूं पाया। चौथा बचन है कि ओ भगत सहन जी जिन्हां नूं लोक नाई शब्द वरदे सन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, मैं किसे जात बिरादरी नूं केंद्रित रख के नहीं, पर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच है ओ मैं जरूर सांझा करना चाहुंदा हां कि उहनां नूं लै लोक बुत्तियां करन वाला नाई कहिंदे ने, पर हजूर ने कहा देखो कि अज ओ महापुरख परमात्मा दी भगती करदिया करदिया श्रोमणी भगतां दे विच ओदी शमूलियत हो गई। इस बचन नूं ध्यान नाल पढ़ियो, नामदेव जी लई शब्द छिंबा वरत्या गया, कबीर साहब लई जुलाह वरत्या गया, भगत रविदास जी लई शब्द चमार वरत्या गया, सैन जी लई भगत शब्द नाई वरत्या गया, पर सच एवे कि एक हल वाण वाला जिमीदार जिदे लई शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने जाटरो वरत्या है, एक जाट उस दे मन विच इन्हां महापुरखां दे जीवन दियां साखियां, इन्हां दी परमात्मा विच अभेदता, इन्हां दे अंदर परमात्मा दी बख्शिश नूं देख के एक हल वाण वाला जिमीदार परमात्मा दी भगती भी जुड़िया। उहने इन्नी भावना नाल परमात्मा दी भगती कीती, तन गुरु अर्जुन देव महाराज कहिंदे ने उहने परमात्मा दे प्रतख दर्शन कीते ते जो कुछ उन्हें अपनी जबान तो कहा परमात्मा ने उस भगत दे हर कार्य नूं सिरे ला दिता। यह पवित्र शब्द है कि गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छिपरो होयो लाखीना। एते शब्द छिपरो वरत्या है कि छिंबा, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छिपरो होयो लाखीना, बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। ते महाराज कहने नीच कुला जोलारा पयो गुणी गखीरा, रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई बुतकार।

परनवत नानक तिनकी शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दी हाजरी भर रहे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने हुणे ही बड़े प्यार दे नाल साडे अति सत्कार योग भाई साहब भाई बख्शी सिंह जी होरां ने सतगुरु ने जो अज अमृत वेले

उस पवित्र बचन की व्याख्या सरवण कराई जो सतगुरु जी ने अपने जीवन दे अंदर कमा के अपने अनुभव दे पवित्र बचन सानू बख्शिश कीते। साध संगत आओ, जिमें गुरमुखा ने हुक्म किया सी पिछले साल भी कि श्री ननकाणा साहब जी का साका भावा वह कई बारी सुना भी चुके हैं, आप जी ने कैस राही भी सुनिया है, पर जो आप जी का हुक्म धन गुरु नानक साहब जी का वह पवित्र अस्थान जिस थां ते दाते ने रहमतां दा मीह वरसाया उथे कुकर्मी मसंद ने महंत ने इखलाक तो डिग के कियो जियां कणौणियां कारवाइयां कीतियां ते दूसरे पासे उस घर नूं आजाद कराण दे लई सतगुरु दे सिख किन्ने चाओ दे नाल अपने सिर तली दे उत्ते रख के गए ते गुरु नानक साहिब जी दा घर अपने खून दे नाल उन्हां ने उस अस्थान नूं धो के कुकर्मी महंत तो आजाद कराया सी। करो कृपालता, धन गुरु नानक साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां दी टेक लवो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, आप बख्शिश कृपा करके विच वरतो, अंदर नूं एकाग्रता टिकाओ बख्श के दाता जी। इस गुरु प्यारियां दे इतिहास नूं आप विच वरत के दातार जीओ विचार करा लवो। करो कृपा साध संगत, असीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पावन पवित्र पातशाह जी दे अमृत बचन आपां पढ़ने हां कि जिस धरती ते सतगुरु दे चरण पै जान उस धरती दे भाग इन्ने कु चंगे ने कि उह सुक्की कोई धरती भी मानो पूजन योग हो गई। जिन्हां गुरमुखां ने उस धरती ते जा के दर्शन कीते उन्हां गुरमुखां दे अंदर नूं वी टिका आ गया जिथे सतगुरु के चरण पै। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने धरती नूं वी धन कहो जिन्हां ने जा के उस धरती दी खाक अपने मस्तक ते लाई उन्हां नूं वी धन कहो। ते कहिंदे ने गुरु के सिखा उस कुल नूं धन कहीं जिस कुल विच गुरु आया, उस पिता नूं धन कहीं जिस घर विच गुरु आया, ते उस माता दे चरणा विच नमस्कार करी जिस ने गुरु नूं जणे। खजूर दे अमृत बचन आपां पढ़ने आं, सा धरती पई खरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पए खरियावले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए फिर किन धन धन पिता, पिता नूं भी सत्कार दे, धन धन कुल उस कुल दा भी अदब करी, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। कहिंदे जिस ने गुरु नूं जन्म दिता उस माता नूं भी नमस्कार कर। साहिब गुरु नानक देव जी दे जीवन तो थोड़ा जिहा आरंभ अर्ज करनी चाहना हां। साहिब सच्चे पातशाह महाराज माता तृप्ता दी कुख राही इस राय पोए दी तलवंडी ते हजूर दी आमद हुई। कवि संतोख सिंह ने बड़े कमाल दा बचन कहे, जदो धन गुरु नानक साहिब जी दे आगमन वाले प्रसंग कवि जी लिखदे ने ते कहिंदे ने कि राय भोए दी तलवंडी उथे मीह पै के इस तरह गलियां साफ हो गईयां, चार चपेरे खरियावल हो गई, पशु पंछी जीव जंतु प्रसन्न होए। ते कहिंदा इस तरह कि जिवें मानो एक चक्करवर्ती सम्राट दे आउण तो पहला पूरे शहर दी सफाई कर दिती जाए, मेरे गुरु नानक साहिब तुहाडे आउण तो पहला उस कादर ने कुदरत राही इस सारे पिंड नूं शिंगार दिता, क्योंकि अज पातशाह दे पातशाह ने आउणा। उस भाई संतोख सिंह ने एक बचन कहे, कहिंदे ने कि आगमन तो पहला माता तृप्ता

विशर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो गुण गावा दिन रात नानक चाहो एहो परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आज आप जी शहीदां दे सिरताज पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत वाला दिन मना रहे हो। आपने हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन

ही हर मान निमाणे जन नानक नाम दीवान है हर तान सिताणे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग शहीद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दे इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदो जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देने तो बाद भी ना समझे, ते उसनू कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उन्हूं समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब है। आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई तां भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देशां सोढ़ियां होरस आजारना जरे अजावे। आओ सतगुरु दे पवित्र बचन और गुरु इतिहास दी विचार आपां ने करनी। समा थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकदा है, कृपा कर दिया जी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप कृपा करके विच वरतो, अपने पवित्र बचना दी विचार करा लवो। करो कृपालता गुरमुखो, बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे परसों आपा ने बचन उचारे सन, विचार कीती सी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर तीजै राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। थोड़ी जी तवज्जो देनी अज दे संत नूं, अज दे बचन दी व्याख्या कर ली, सानू पिछे झात जरूर मारनी पैगी। ते अर्थ उदन स्पष्ट कीते सन कि जेड़ा बंदा अंदर कपट रखदा है, अंदर ओदा अत दा मैल है, ते बाहरों भावे ओ रागां विच गा के लोकां नूं सुनाए, ओ कई तरह दे नाद वजा के संख वजा के कह मैं प्रभु दा भगत हां, भावा ओ अनेकां ग्रंथ पढ़ के कह कि मैं आत्मा दी परमात्मा दी मन दी मैं इस विषयां ते गंभीर विषयां ते बोल सकना, पर मेरे गुरु रामदास कहन लगे जे अंदर कपट छल नाल भरिया पिया, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै, तेरे सुनाउण गाउण दा कोई लाभ नहीं। एदा मतलब जे अंदर मन विच मैल है ते बाहर गाव्या होया कहया होया थाए नहीं पैणा। ते अज सतगुरु ने जेड़े बचन कीते कहन लगे, जिन अंतर हर हर प्रीत है
ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਧੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਲਏ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੜੱਤਨ ਭਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਧੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੋਚੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ

जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी भी सच हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाय माया मोह परम पै पूले सुतदारा शो प्रीत लगाय एक उत्तम पंथ सुनहो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पात कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर देशा हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर देशा परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर इकत्र हुए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी जिथे हफ्तावारी दीवान विच गुरुदेव दे चरण परसन आए हो उथे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दा आगमन दिहाड़ा पिछले दिनी अजे बतीत होया है उस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे आगमन नूं आप बड़े प्यार श्रद्धा नाल मना रहे हो आओ सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पवित्र जीवन संबंधी आपां विचार गुरु ग्रंथ साहिब दी टेक लै के करनी आप समूह माई भाई एकाग्रता बख्शनी सतगुरु दे जीवन दियां कुछ अहम घटनावां जिन्हां विचों सानू बड़ी वड्डी सेध मिलनी है साहिब दे पवित्र जीवन दी विचार आरंभ करिए करो कृपा समूह माई भाई विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा आगमन गुरु

जो लड़ दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मर कबू ना छड़े खेत मरता मरता जग मुआ कबीर मरता मरता जग मुआ मर्त ही ना जानिया कोए ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो ऐसी मरनी जो मर बहुर ना मरना हो बेशुमार अथाह अगंत अतुल